0: 29, 264, 31, 75, जैसे अभी फोन आया कह रहे थे मिलते नहीं सरांश, तो मतलब हमारा ऑफिस तो है असली में ना, हजार स्क्वायर फीट का ऑफिस है
1: भाई। तुझे ड्रिंक का चाहिए भाई, कहीं ड्रिंक नहीं बढ़िया भाई, ड्रिंक का बढ़िया रखो ले आगे
0: भाई। कोकोनट वाटर रखा हमने 200 कोकोनट वाटर रखे हमने,
1: वो कहंदे को ये पिंदे नहीं, कहंदे कोई कनाडा को बढ़िया लेके रखो, बीयर पूरा लग ले आगे रखो,
0: शुगर फ्री कोकोनट वाटर रखे 200, एक हफ्ता चल जाता है उससे हमारा
1: भाई। बीयर ले आगे ठंडी लेके रखो, ऐसे निकल जाती गर्मी आ गई।
0: हां जी हां,

पए ठंड मेरे वे दुखिए शरीर नू मां इक वार मैनू कह दलबीर तू पए ठंड मेरे वे दुखिए शरीर नू शाम हो गया ई वेख सवेरा तू छेते कर आजा मुड़ के माता तेरे पुत तियां सारे परेशान ने चुप जाई।

0: sad, jump are fast, you are fast, happy sad, not it horsey be sad, bole, sonny hall, sassier car.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

क्या बताइए, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बैडनेस डे। तोड़ा अपना प्रोग्राम सजनी स्वेर पे शम्मी पठल लैके हाजिर है। खूबसूरत इस नगबे ने नाल अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत की है। अच्छा, तुहानू आ जिहड़ा इस गीत बारे पता कि नहीं आ, जिहड़ा इस गीत नू गाया ते इह किहड़ी फिल्म है। बहुत पुरानियां इह फिल्मां ने पर सदा बहार इन्हां दे गीत जदों भी सुन लो, जिहड़े टाइम मैं क्या सुन लो, तुसी मंत्र मुग्ध हो जांदे हो इदां दी मौसीकी सुन के। सो तुहानू पता इस गीत बारे जानकारी हैगी है ते जरूर सांझी करियो भी इह किहड़ी फिल्म दा गीत है ते इन्हां इस गीत नू किसने गाया। हाँ जी, मैं कहना भी यह गीत एक एहो जी रूह की खुराक है, जदों भी सुन लो दिल तुहाडी रूह गद गद हो उठती है। सो वेरी वेलकम, हैप्पी गुड मॉर्निंग, तुहाडा अपना प्रोग्राम सजरी सवेर विद शम्मी पठल दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। स्टूडियो दीआं घड़ीआं मुताबिक 5:13 हो चुके ने। इस टाइम पीयरसन एयरपोर्ट ते तापमान है जिहड़ा 15 डिग्री सैलसीयस है दर्ज किया गया ते अज्ज वध तों वध तापमान 25 डिग्री ते फील लाइक 27 डिग्री होवेगा। रात दे करीब है जिहड़ी भविखबाणी वर्खा दी कीती है, हल्की जी होवेगी पर किते किते होवेगी। सो यह रहा जी मौसम का हाल चाल। कहिंदे अरदास हर रोज़ करिया करो क्योंकि लोगों दीआं गल्लां करन नालों किते ज़्यादा सौखा है उस परमात्मा नाल गल्लां करनियां। रब ते विश्वास का मतलब है तूफान विच भी शांत रहना क्योंकि तुहानूं पता है कि किश्ती का मलाह वह खुद है। गुरबाणी दा इलाही कीर्तन अते श्री हरिमंदर साहब दे दर्शन दिन दी इस तो खूबसूरत शुरुआत होर की हो सकती है। हे पाशा बस इन्नी क मेहर रखी, जदों भी अखां बंद करां तेरे दरबार दा नूरानी सरूप मेरे सामने होवे तेरे दर ते आके हर अरदास पूरी हो जाती है। परमात्मा दा नाम ही सब तो वड्डी ताकत है। जदों दिल भारा होवे राह समझ ना आवे किधर नू जाना, एक बारी सच्चे दिल नाल उस परमात्मा नू याद करो, अंदरों सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। जिहड़े लोग सोचते ने कि उन्हां बिना किसे दा सरना नहीं, दस दिओ उन्हां नू कि एक घड़ी रुकण नाल समां नहीं रुकदा। जिंदगी विच तीन चीजां कदे इक्को जिहियां नहीं रहिंदियां। क्या बात है, किहड़ियां चीजां ने इह? तुहाडी उमर, चंगा समां ते तुहाडे अपने। सो समां आ जिहड़ा उह वी सदा इक्को जिहा नहीं रहिंदा, उमर वी आ जिहड़ी समें दे नाल लंघदी जांदी है ते तुहाडे अपने है उहनां दे विहार वी आ जिहड़े चेंज हुंदे रहिंदे। कदे वी किसे दे राह विच कंडे ना खिलारो, कोई पता नहीं कदों तुहानू उसे राह ते नंगे पैर तुरना पै जावे। सो वेरी गुड मॉर्निंग जी, आओ कुछ कु तुहाडे मैसेजेस है जिहड़े उह मेरे तक पहुंचे हुए ने। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, कल भी आए हुए सीगे, मैं माफ़ी चाहांगा, नहीं मैं शेयर कर चुकिआ। गगन जी, दिलबाग जी, साहिल जी, अमनदीप जी, हरमन जी, रेशम भाजी, विक्रम जी, मनदीप जी, सरगुण जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्नवाद। तुसी ये जिहड़े कॉल मैसेज करदे हो ते कुछ कु विचार साडे तक पहुँचाते हो। लखविंदर भाजी वेरी गुड मॉर्निंग सर, हरमन जी होरां ने जिहड़े कल भी भेजे सीगे, बहुत खूबसूरत 17 भेजदे ने, बड़ा मज़ा आउंदा पढ़ के। कहिंदे बहुता करके कदर गवाई अकल भावें मैनू लेट ही आई, साफ दिलां दा मुल नहीं पैंदा, हर कोई इत्थे मतलब लैंदा, किन्ने कढ गए मतलब मेथों फिर भी भुल जाईदा, सब तो माड़ी आदत मेरी हर एक नाल खुल जाईदा। क्या बात है जी, क्या बात है। सो कहिंदे इंसान ओही जो हिम्मती जिहड़ा मेहनत नाल अपने हालात अते तकदीर बदल लवे, कल की होवेगा ए कदे भी ना सोचो, की पता वक्त कल नू अपनी तस्वीर बदल लवे। सजरी सवेर मुबारक होवे जी, वाहिगुरु मेहर करन, बहुत बहुत धन्नवाद। उठ मुसाफिर सुत्या तेरे सिर ते कूके काल, चेता कर उस रब दा जिस निभना तेरे नाल, सारा कुछ रोक के दोबारा शुरू करना पवे, सारा कुछ रोक के जा दोबारा स्क्रैप तो शुरू करना पवे, ता डरी ना की पता इस बार कहानी तेरे मन पसंद दी होवे। वाह क्या बात हरमन जी, बहुत बहुत धन्नवाद इन्हां खूबसूरत सत्रां दा। ते उत्थे ही रेशम भाजी हुणी उन्हां दा भी मैसेज आया ते ओह कहिंदे ने एवरी सनराइज इज ए गिफ्ट, एक्सेप्ट इट, लिव इट एंड इंजॉय इट, हैव ए ग्रेट मॉर्निंग, हैप्पी वेडनसडे। तुहानूं सारिआं नूं हैप्पी वेडनसडे जी, सारिआं नूं परमात्मा अग्गे अरदास करदे आं हफ्ता ए दिन हर दिन तुहाडे परिवारां दे विच खुशियां खेड़े लैके आवे, तुसी अपने कारोबारां दे विच होर तरक्कियां करो। सो आओ प्रोग्राम दा आगाज़ करदे आं, कुछ क खास जिहड़ियां खबरां उन्हां तों आपां शुरुआत करांगे। गाना सुन के मैं तां बड़ा खुश हो गया,
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ,

जी हाँ दोस्तों, इस हिस्से नूं स्पॉन्सर किया जा रहा स्माइल्स ऑन व्हील्स मोबाइल डेंटल हाइजीन केयर। अपने दंदा की मसूड़िया की सेफ्टी वास्ते, उन्हां दी सांभ संभाल वास्ते तुसी बलबीर सोही जी होना दे नाल गलबात कर सकते हो। स्माइल्स ऑन व्हील्स मोबाइल डेंटल हाइजीन केयर है जिहड़े तुहाडे लई लैके आए ने एक सुविधाजनक सेवा। ये कहिंदे असी तुहाडे कोल आउंदे हां, तुसी सिर्फ एक कॉल कमाउणी है ते ओ नंबर है 6479690008 6479690008 ते तुसी ए नंबर ते है जिहड़ा कॉल कमाउणी है ते इन्हां ने अपना जिहड़ा ट्रक है तुहाडे ड्राइववे ते ला देना ते उत्थे पूरे परिवार दी है जिहड़ी ओरल हैल्थ दा इह टेक केयर करदे ने, डेंटल दा टेक केयर करदे ने। कई बार बच्चों के ब्रेसिस पवाने ने जां फिर तुसी अपने दंदा दी क्लीनिंग करानी है, हर 6 महीने बाद क्लीनिंग है जिहड़ी दंदा दी एक रेकोमेंडेड है उह करानी चाहीदी है, जिस दे नाल तुहाडे दंद ते मसूड़े है जिहड़े उह मजबूत रहिंदे ने। सो तुसी स्माइल्स ऑन व्हील्स दे बलबीर सोही जी उन्हां दे नाल संपर्क कर सकदे हो। कहिंदे आ अपनी ते अपने प्यारियां दी मुस्कान दी संभाल लई अज ही साडे नाल संपर्क करो 6479690008 6479690008 ते स्माइल्स ऑन व्हील्स मोबाइल डेंटल हाइजीन केयर दे नाल संपर्क कर सकदे हो। कहिंदे सारियां ही इंश्योरेंस कंपनियां दे नाल काम करदे ने। सो उत्थे ही तुसी ट्रकां ट्रेलरां दा कोई भी काम कराना ते प्रोवन ट्रक रिपेयर एंड टायर्स दी टीम दे नाल संपर्क कर सकदे हो। प्रोग्राम दा हवाला दे दियो, पीएम इंस्पेक्शन जिहड़ी हुंदी है ओह कॉम्पलीमेंटरी फ्री ऑफ कॉस्ट कीती जाएगी। बाकी तुसी एमिशन टेस्ट, एनुअल सेफ्टी, ऑयल चेंज, इंजन रिपेयर जां फिर डीपीएफ सिस्टम रिपेयर, ट्रांसमिशन डेफ रीबल्ट, मतलब स्पेशलाइज करदे ने कार हॉलर्स दे उत्ते। सो तुसी किथे जाना, तुसी जाना 14 मैनसवुड कोर्ट मिल्टन विखे वाक्य ने दोस्तों। हाईवे 401 तो एग्जिट 320 ते हाईवे तो सिर्फ 4 मिनट की दूरी ते एह ने प्रोवन ट्रक रिपेयर एंड टायर्स, फुली सिक्योर्ड 24 आवर सिक्योरिटी दे नाल ए फेंस्ड इना दा गराज है। सो 519-490-61 519-400-9061 ते प्रोवन ट्रक रिपेयर एंड टायर्स की टीम दे नाल संपर्क कर सकते हो। बाकी भंगड़ा गिद्धा सीखना चाहते हो तां फिर दोस्तों तुसी द भंगड़ा अकैडमी, ना ही बड़ा खूबसूरत है, द भंगड़ा अकैडमी नू जॉइन कर सकते हो। तुसी आप जॉइन कराना, अपने बच्चियां नू जॉइन कराना। ब्रैम्पटन दे एन गढ़ दे विच विलियम पार्क वे ते एयरपोर्ट दे इंटरसैक्शन दे कोल द भंगड़ा अकैडमी खुल चुकी है ते उत्थे इस वक्त है जिहड़ा इनरोल किया जा रहा समर कैंप जो कि जुलाई दे पहले हफ्ते तो शुरू होणगे। सो वधेरे जानकारी वास्ते जोत होना दे नाल तुसी संपर्क कर सकते हो। यह जिहड़ी टीम है एक तां वख वख वड्डे मंचा दे उत्ते भंगड़ा परफॉर्मेंस कर चुकी है, वड्डे वड्डे कप है जिहड़ी ओह जित चुकी है ते होर कई ट्रेडिशनल साज तुसी सीखना चाहते हो तां वी तुसी इस भंगड़ा अकैडमी नूं जॉइन कर सकते हो। 6475076772 6475077672 ते है जिहड़ा तुसी संपर्क कर सकदे हो। बच्चियां दा उहनां दा लैवल दे के उहनां नूं उस लैवल दी क्लास दे विच पाया। जे तुसी बिगनर हो तो बिगनर तो स्टार्ट करदे हो, जे तुसी थोड़ा मोटा सिख्या होया तां फिर उस मुताबक है जिहड़ा तुहानूं उस क्लास दे विच ते उस एज दे ग्रुप दे बच्चियां दे विच जिहड़ा पाया जांदा। सो भंगड़ा गिद्धा वास्ते द भंगड़ा अकैडमी नूं तुसी ज्वाइन कर सकते हो 6475077672 ते संपर्क किया जा सकता। ते दोस्तों ड्रीम होम अपलायंसेस, कोई भी अपलायंसेस बाय करना तां फिर ड्रीम होम अपलायंसेस। कहिंदे कोई भी कैनेडा दे विच कोई भी तुहानूं लगदा तुहानूं डील मिल रही है, एक बार साडे कोल लैके आ जाओ, असीं मैच नहीं असीं उहनूं बीट करांगे। तां ही नाम भी है जिहड़ा ड्रीम होम अपलायंसेस, अपलायंसेस एक लैने जां फिर बंडल पैकेजेस लैने। ड्रीम होम अपलायंसेस दी टीम नंबर है जी 905-805-3000 905-805-3000 जां फिर तुसीं विजिट कर सकदे हो 2915
Argentia Road, Mississauga. 2915 Argentia Road, Mississauga, Unit Number 2 ਤੇ Dream Home Appliances ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

0: सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कभू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी कर फिर एक खूबसूरत सवेर, चढ़दी कला वाली सवेर ते खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधू। पंजाब की धरती तो निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़ चुके हैं, तो सुनने वाले सारे स्रोतों नूं प्यार सत्कार अदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार। सो स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:02 हो चुके हैं, थोड़ा साड़ा साथ हुण तो लैके 8 तक बनया रहना। उम्मीद करते हैं तुसी ठीक ठाक होंगे, अज की खूबसूरत सवेर नूं तुसी इंजॉय कर रहे होंगे, अकाल पुरख का शुक्र कर रहे होंगे। तो 905-673-3337 नाल दी नाल स्टूडियो नंबर दे दिए 905-673-3337 तुहाडियां गल्लां बातां रमेश जी तक बहुत शॉर्ट ते सीमित शब्दां विच पहुंचन ताकि रमेश जी उन्हां दा जवाब दे पण, खबरां दे नाल सांझ पाउणे आ। पंजाब दी धरती तों रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़े होए ने, सत श्री अकाल कहिंदे आ, जी आयां नूं कहिंदे आ, अज दी नवीं सवेर नवें प्रोग्राम नवीं खबरां दे नाल। रमेश जी सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है बहुत बहुत स्टूडियो दे विच, की हाल चाल है जी? रमेश जी सत श्री अकाल जी, थोड़ी आवाज़ आई थिंक पहुँच रही है, मेरे तक थोड़ी आवाज़ नहीं पहुँच रही। ओके रमेश जी माइक्रोफोन, ओके 905-673-3337 ओके जी सत श्री अकाल रमेश जी, मेरी आवाज़ थोड़े तक पहुँच रही है जी? आई थिंक कुछ टेक्निकल इशूज आ, बस गए तो आए, लैट मी चैक 905-673-3337 जुड़े हुए पंजाबी लहरां दे नाल।
1: ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਕੰਕਰੀਟ ਡਰਾਈਵਵੇ, ਪੈਟੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ समय सिर काम करदे ने, बहुत ही रीजनेबल रेट। फ्री एस्टिमेट ले कांटेक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293 नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपनेयां नूं पूरा करनगे।
0: जी बिल्कुल, सत श्री अकाल रमेश जी, थोड़ा स्वागत है पंजाबी लहरां दे विच, तुसी मैनूं सुन पा रहे हो जी? रमेश जी सत श्री अकाल जी, आई थिंक मेरी आवाज़ थोड़े तक पहुँच नहीं रही। ओके मैं थोड़ा जहा टेक्निकल रिफ्रेश करके आया, बस गए तो आए 905-673-3337 905-673-3337 बस एक सैकेंड मैं थोड़ा जहा रिफ्रेश कर ला 905-673-3337।

0: भी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

सुस्पित आकाश खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क हैं सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी जिते सुन रहे हो उत्थे बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज दे विच तुसी सानू लंडन किचन वॉट टू कैम्ब्रिज दे नाल नाल एक्सक्लूसिविटी यानी कि होर कोई भी चैनल नहीं चल रहा। अगर तुसी किसी होर चैनल ते अपना बिजनेस या इश्तिहार रन कर रहे हो इहदा मतलब तुसी घट एरिए दी कवरेज लै रहे हो। तकरीबन इस समय साढ़े जी टी ए तो बाहर दे जिहड़े शहर रेडियो आवाज़ ए एम 530 कवर करदी है उस विच तकरीबन 1 मिलियन दे आसपास पापूलेशन जिहड़ी बाहरले शहरां दे विच बैठी है। मुढले तौर ते ओशवा हो गया तो इस तों बाद तुसी कोबर बेलबेल तक चले जाओ पीटरब्रो लिंडजी तो लै के बैरी बैरी दे नॉर्थ तो लै के तुसी हर जगह दे उत्ते जिहड़े साउथ एशियन लोग जिथे बैठे उत्थे लंडन किचन वॉटल कैम्ब्रिज सब तो वड्डी गिनती जी टी ए तो बाहर जिहड़े साउथ एशियन लोगों की अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना साढ़े इस शो दे राहीं प्राइम टाइम दे विच ते प्राइम रिजल्ट दे नाल ते सैटरडे नूं 10 to 1 प्राइम टाइम दे विच सब तो वध वीकेंड दा लाइव ऑन लोकेशन सोल्ड शो टोरंटो दे जिहड़े साउथ एशियन शो ने उहनां विचों है 416-500-1800-3200 416-500-3200 शब्दां दे इस काफले दे विच ते दुनिया दी स्पीड दे विच साडे नाल शामिल हो तुहाडे घर तों कम तक ते हम सफर शो रेडियो आवाज़ विच मैं अमनदीप ब्रॉडकास्टिंग च 15 ईयर प्लस अप्रोक्सीमेट जिहड़े मैनूं हो चुके ने ते पीअरसन एयरपोर्ट दे ट्रैक 6 ते इस जिथे वैस्ट जैट ते यूनाइटेड एयरलाइंस जिहड़ियां उड़ान भरन तैयार ने ते एयर कैनेडा लैंड हो चुकी है बिल्कुल तुहाडे नाल। इसी तरह असी शामिल हाँ कि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है भूखे को रोटी का बेकार को रोजी का इंतज़ार है।

0: लोग जो है वो डिस्काउंट करके और आपको घटिया माल चिपका देते हैं. सो इट्स बेटर कि हमारे जो जर्मन मल्टी पॉइंट लॉक हैं, जिसमें नॉट ओनली साइड पे बट टॉप पे भी एक लॉक लगता है, तो सिक्योर हो जाता है और साथ में विंडो एयर टाइट हो जाती है. सो ये तीन चीजों के साथ अगर आपको विंडो लेनी है तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करिए 416-206-3200. अमन भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके अगर बहुत मजबूरी है, आपको दिखा है कि इस बार आपकी विंडोज डन हो चुकी थी और आपका टाइम हो गया है, अप हो गया है विंडोज का कराने का, तो आप हमें कांटेक्ट करिए. हमारे पास फाइनेंस की ऑप्शंस भी हैं. जैसे टाउन हाउस होता है वो 75-80 डॉलर पर मंथ के हिसाब से हो सकता है, सेमी डिटैच है वो अबाउट 90 डॉलर के आसपास हो जाता है पर मंथ. सो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहने का मतलब ये है. सो आप कांटेक्ट करिए 416-206-3200 कोई भी विंडोज या डोर्स के लिए आपको अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहिए.
1: सिक्के बंद, लाइफ टाइम वारंटी राइट विंडो फोर्स 416-206-3200. शुभानु भाई थैंक यू. अपनी गड्डी दी किसी भी तरह दी रिपेयर हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर तो करा सकते हो. हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर जो कि 11000 गैरी गरेवाल तुहानू फेस वैल्यू दे उत्ते ये वर्कशॉप रन कर रहे हैं 19 साल तो. कोई भी रिपेयर मोटरसाइकिल दी कार दी किसी भी मॉडल ब्रांड दी 19 साल तो 905-463-3363-905-463-6363. 20 साल तो लैंडस्केपिंग च टॉप का नाम है ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग. अमीर ती रौणा दी कंपनी इस समय कारपोरेट घराणियां दे वड्डे प्लाजिया की लैंडस्केपिंग करती है. तुसी अपने मॉल, अपने घर या किसी फैक्ट्री की लैंडस्केपिंग करवानी है 647-784-1213 647-784-1213. इसी तरह मनमोहन का नंबर लिख लो अगर ऑटो इंश्योरेंस घट नहीं रही. मनमोहन का नंबर है 416-990-3200. 3 मिनट तो ऑटो इंश्योरेंस खलास 416-990-3200. और जिन्होंने डक्ट क्लीनिंग करवानी है, एसी हजे प्रॉपरली चले नहीं, डक्ट क्लीनिंग कराओ जोरों शोरों ना. इस समय डक्ट क्लीनिंग गर्मियों के बहुत जरूरी होंगी है. तुहाडे सारे वेंट साफ हो जाएंगे, सारी साफ हवा आऊगी घर के अंदर. नानक डक्ट क्लीनिंग 416-729-1521. जिथे भी डक्ट क्लीनिंग करते हैं नवा फिल्टर पाके आते हैं, बिल्कुल फ्री आ डक्ट क्लीनिंग के नाल. 416-729-1521 कॉल करनी है. मिल्टन फोर्ड चोपड़िया का नाम चलता है. गड्डी फोर्ड की मस्टैंग होवे, मैकी F-150 लैरियट या ब्रोंको होवे, सड़कां दे दहाई पाउंदे ने. तुसी मिल्टन फोर्ड 416-302-9941 कॉल करनी है. और बोल्टन स्प्रिंग शॉप पटे कमाणिया च टॉप दा नाम है. गड्डियां दे पटे कमाणिया नवें पवाओ. बोल्टन स्प्रिंग शॉप 905-857-8282 नंबर है इहनां दा, 905-857-8282. अशोक सैनी CPA CGA ने अकाउंटिंग दे विच बड़ी कन्फ्यूजन है. अकाउंटिंग च अकाउंटेंट 1500-1600 डॉलर चार्ज कर लैंदा है, साल च मिलदा 5 मिनट लई है, 100 डॉलर महीने का तुसीं पत्ता लाया है अकाउंटेंट नूं. CPA अशोक सैनी कहिंदे साडे कोल आओ, रीजनेबल कीमत ते अकाउंटिंग ते प्लस प्रॉपर डेटाबेस बना के देवांगे. 905-458-1399-905-458-1399. पंजाब इंश्योरेंस वाले दी महिम वड्डी हुई है, किसी दे वी घर च कोई बीमार हैगा सिर्फ तुसी इन्हां नूं कॉल करनी है. एक फैडरल गवर्नमेंट का फॉर्म भरवा के देणगे RDSP का 416-910-9000-416-910-9000 दे उत्ते कॉल करनी है. RSG कस्टम सोफा, सोफे बनाओ, बैड बनाओ, बाबा जी का कमरा तैयार कराओ, गुरु पातशाह जी का, जां तुसी अपने अंदर उत्थे नमाज पढ़ते हो घर च, जां तुसी अपने घरे कृष्ण महाराज या किसी भी जिन्हों भी इष्ट नूं मानते हो. ਤੁਸੀਂ RSG ਕਸਟਮਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ. 647-705-1317 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ RSG ਕਸਟਮ ਸੋਫੇ ਵਾਲੇ. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 416-518-3200. ਅਤੇ ਪਰਮ ਕੁਇਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ 13 ਰਿਚਮੰਡ ਸਟਰੀਟ ਥੋਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਨੇ 13 ਰਿਚਮੰਡ. ਪਰਮਸ ਕੁਇਕ ਲਿਊਬ ਰਿਪੇਅਰ, ਕਾਰ SUV ਵੈਨ ਟਰੱਕ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਨੈਗਰਾ ਫਾਲਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ. 289-498-1300. 299-498-1300 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ 416-518-3200 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ 416-518-3200 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਪੈਸਾ
1: ਅੱਛਾ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰਦੀਪ ਪੰਦੇੜਾ ਦੇ ਟੀਮ ਚ 400
3: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए ओई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 905-874-9878।
2: बम्बा गया मैं जिते जावा मुंडे कहते बम्बा गया।
3: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड्स, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
4: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
4: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आली सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा, विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए।
3: नहीं, मैं मर जा उत्थे की होने।
2: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना उत्थे ही ता मिलता है। सही सुनिया भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999।

0: एम्प्लॉयड लोग, नो एज लिमिट, 50 साल के भी क्लाइंट है हमारे, 75 के भी और 30 ईयर्स के भी हैं, आसान से कोर्स कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं, फंडिंग खर्च भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज पे, अगर आप मैरिड हैं फंडिंग ज्यादा आती है, मैरिड विद किड्स हैं फंडिंग और ज्यादा आती है, गुड फॉर हाउस वाइफ। हमारे कितने ही लोगों को हम हेल्प कर चुके हैं 8 ईयर से बिजनेस में है, कोई इसमें हिडन चीज नहीं है, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती, और काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी, तो आपकी ईमानदारी चेक हो रही है, मेरी नहीं हो रही इसमें, आपने कितनी फीस देनी है, 199 या 499 फीस है, फ्लैट फीस है, कोई कमीशन कोई परसेंटेज नहीं है। यस, एक तरफ आपको 30 से 100,000 आ रहा है, हमें सिर्फ छोटी सी चीज आ रही है, यस, कोई इसमें कैच नहीं है, सही है, सच चाहिए चीज। और आप हमारे ऑफिस आए, इतनों को असिस्ट कर चुके हैं, एग्जाम्स नहीं है हमारे कोर्सेज में, आसान से कोर्सेज है, डॉक्यूमेंट भी क्या लगते हैं आपको, नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें क्या हेरा फेरी करेंगे आप बताइए, गवर्नमेंट पे डॉक्यूमेंट पहले से ही है, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, कोई कैच नहीं है, नंबर 4372461375, 4372461375, उन्हें कॉल करो, तो एस्टिमेट चक्को जी, ऑफिस आओ, 4372643175,
1: 4372461375 ते तुसी हुणे कॉल कर सकदे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।

0: वीकेंड हो गया फिर,
1: डबल लॉन्ग वीकेंड हो गया।
0: सो अगले अगले वीक अगले वीक की छुट्टी है, बुधवार को होर नहीं किस दिन।
1: हाँ जी,
0: इस तरह करो, रेडियो नू कर दो। मैं चेक करवाना सर, बहुत शुक्रिया थोड़ा, थैंक यू। मैं उन्होंने कहना कि यार थोड़े करो सिस्टम नू सेट, मैं देखता लाइन का इशू है या साड़ी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इशू है, हुणे पता लग जाना। मैं ब्रैम्पटन दे विच चाहिदा एक बहुत वधिया बड़ी कमाल दी कंपनी है ट्रक मकैनिक दे लई। तुसी कॉल कर लो सुखविंदर भाजी नू 416-616-3345 सुखविंदर भाई जी, ब्रैम्पटन दी डे शिफ्ट है, ट्रक मकैनिक एक साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। 416-616-3345 416-616-3345 7200 हेलो
2: नवी कार इंश्योरेंस से होम इंश्योरेंस वास्ते नंबर दे दियो प्लीज।
0: हाँ जी सर, नंबर तुसी नोट करो 647
2: या
0: 674
2: या
0: 4735
2: बंदे दा नाम की है पाजी?
0: इन्हें दा नाम है राजवंत कौर।
2: थैंक यू पाजी,
0: नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू सो मच। किसी ने भी गड्डियां घर की इंश्योरेंस करवानी है, एक तो 25 तो वध कंपनियां तो कोट लैके थानू 30% तक का डिस्काउंट दवा रहे ने। 647-647-6745 6744735 6474-4735 के उत्ते कॉल जल्दी तो जल्दी कर लवो। 3823-3823 वाले की हो गया। ओके एक सैकेंड दो तो अगली कॉल लेने हैं, तो जस्ट वेट ऑन द लाइन। नंबर है अपना 905-673-3337 9056733337 इज द ओनली नंबर टू कॉल।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप का नाम एक है वह है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला और करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना हो एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 ते कॉल करो। कार वैन ट्रक का काम हो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डिया लेके जाना रिपेयर के लिए रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला दे व्हीकल्स से भी काम करते हैं कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल। सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट की सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करते हैं इलैक्ट्रिकल कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: Oh, क्या बात है राजधानी स्वीट का खाना खा के तो बंदा कहता के जी करता बस बिना गिड़के है नी गुरदास मान साहब दे बोल के मक्की दी रोटियां मैं बिना गिण खाई जावा वही हिसाब है क्योंकि स्वाद ही यार बड़ा वखरा। लवाना वेलनेस स्पा लेडीज वीकेंड आ रहा वह भी लॉन्ग वीकेंड क्यों ना थोड़े आ कहते होंगे कि टॉर टूर कढ़ लो। सो लवाना वेलनेस स्पा एयरपोर्ट रोड से स्टील्स से है 341 पार्कहर्स्ट स्क्वायर एयरपोर्ट स्टील्स हाइड्रा फेशियल 150 वाला 130 दे विच लेजर हेयर रिमूवल 250 की थान से $200 दे विच वैक्सिंग 120 की थान से 100